0: मिंगा चुवे तै तौ कासना नल्लीगु सिंतिरिस पा समुहु बनेका नचा रिगुस पा लिकावा गिमंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा भाषा मुख यानी हम पिन नहीं चैता कन्या पसी कचम से छम भी सुन जमर चे ऑफिशियल लिखी रो यल चिम भी तब वाकु चिल का कुन मकुस न्या चंग की कंसते
0: निगा कै बिन रिस्तु मारे तैता माइटो
1: या या सिना काजा रिसु एस्ता कुनन सेस्ता